0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: सेबेस्टियन।
2: नो
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: Hi, this is Pablo. Don't forget to join me on our sister station, Sunrise Radio, on Sundays from 4 p.m. on 963 and 972 a.m. in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, for your home smart speakers, and on the Sunrise Radio app.

0: राबी।
1: अरे सारे शराबी, क्या हो राजा?
2: गली में आ जा।
3: होली होली,
4: भांग की गोली ओ नखरे वाली।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: Sunrise Retro.
1: Sunrise Retro.
2: Hit of the hour with Sony TV. Lights on, hot seat ready. Amitabh Bachchan ready. Yes, it's back. Your favorite game show, Kaun Banega Crorepati, is back. Watch tonight, 9 p.m. on Sony TV.
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: This is Sunrise Retro.
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. इस समर ज्वेलरी शॉपिंग का मजा लीजिए विद द कूलेस्ट डील्स फ्रॉम जॉय अलुकास। डायमंड और प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी की खरीदारी पे पाएं फ्री कैश वाउचर्स, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर 0% डिडक्शन एंड मच मोर। ये एक्सक्लूसिव समर ऑफर्स सिर्फ 30th अगस्त तक वैलिड हैं। तो देर किस बात की।
2: टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: एंजॉय मोर स्पार्कल मोर जॉय ओनली एट जॉय अलुकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
4: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
5: 25? Seriously?
4: Sounds like Ojo time.
5: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
4: Sorry about the wait. How can I help?
5: You can help me celebrate. I won.
6: Feel the fun. Play Ojo.
7: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
8: London ka retro Asian mix. Sunrise Retro ko sunne ke liye shukriya. Hamare sister station Sunrise Radio ko sunna mat bhuliyega. On 963 and 972 AM in London. Nationwide on DAB. Duniya bhar mein via sunriseradio.com. Free Sunrise Radio app par. Ya phir apne home smart speakers. Ya radio player and nation player app par. Ye hai Sunrise Retro.

0: ला ला ला। अरे पीछे मुड़ के ना देख प्यारे आगे चल ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
1: Sunrise Retro

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

गाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: बड़ा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: This is Sunrise Retro.
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries. I'm having fun on PlayOjo.
3: Keep it fun with PlayOjo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
4: Feel the fun. PlayOjo.
3: 18 plus gamble aware.
5: London ka retro Asian mix, Sunrise Retro ko sunne ke liye shukriya. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 एएम इन लंदन नेशन वाइड ऑन डीएबी दुनिया भर में वाया sunriseradio.com फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777 Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.

0: ये है सनराइज
1: रेट्रो
2: और इस दिल में क्या।
1: दिस इज सनराइज रेट्रो लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स।
0: ये है सनराइज
1: रेट्रो।